मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

0: सरसराट हो डॉग आणि उडी उतारा डॉग।
1: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं।

अमाश जली को आग कहते हैं, बुझे को राग कहते हैं, जिस राग से बारूद बनती है उसी को लक्ष्मीकांत कहते हैं।

0: नहीं नहीं नहीं नहीं घाम ही फुटला घाम ही फुटला अंगा लाया सुटलाय गधरथराट घाम ही फुटला अंगा लाया सुटलाय गधरथराट
1: अरे कुठे गेला तू बघून हो किती सुपाइटर
2: अरे टकले की खोपड़ी टूटने की आवाज सुनी तुम लोगों ने अरे अभी तो लक्ष्य का एक हाथ गया रे लक्ष्य का दोनों हाथ दोनों पैर भी गया ना लक्ष्य किसी के सामने झुकेगा नहीं क्या समझे नहीं समझे

0: अगनाई गाँव में फुटला अग गाँव में फुटला अंगा लाया छुटलाय थर थरात गाँव में फुटला अंगा लाया छुटलाय थर थरात
1: रो मत गंगू, ये तो दुनिया की रीत है। अरे ये दुनिया वाले न तो खुद चैन से जीते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं। I hate tears गंगू, इन आंसुओं को पोछ दो, ये बहुत कीमती है रे।

0: त्या उत्सवांनी संपूर्ण महाराष्ट्र आणि मग भारत राष्ट्रीय आंदोलनाच्या लाटेत ओढला गेला.
1: बंगाल का विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं है, ये ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो की घिनौनी नीति है. और इसका केवल एक ही जवाब है, विदेशी सामान का बहिष्कार.
2: स्वदेशी अपनाओ, विदेशी जलाओ. दोस्तों, आज की यह होली हमारी गुलामी की जलती हुई जंजीर है.

हर पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना विराजमान से ही श्री तीर्थेश्वर शिव जी महाराज साहब, जिनको हमने अपने दिल में बैठा के रखा है, जिनको हमारे दिल में हमारे परिवार ने बैठाया है, कि मैं देख रहा हूं जो 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के हैं, उन्होंने इन आंखों से गुरुदेव को नहीं देखा है। और बिना आंखों से देखे दिल में उनको विराजमान कर लिया आपने, आपके दिल मंदिर में, आपके मन मंदिर में आराध्य गुरुदेव की प्रतिमा को प्रतिष्ठित कर दिया जिन्होंने आपके दिल में। ऐसे आपके परिवार को मैं सबसे पहले अभिनंदन देता हूं कि आपने संतति के दिल में गुरु को विराजित कराना एक काम जो माँ बाप कर जाते हैं, उन्हें जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ता है। और आज से वो गाथा शुरू कर रहा हूं आपके लिए, नहीं मेरे लिए, नहीं सभी के लिए। कि कैसे जीवन बनाया जा सकता है, कैसा जीवन बनता है और क्यों ऐसा जीवन बनता है। पत्थर बिना मूर्तिकार के मूर्ति बनता नहीं है, कोई मिट्टी बिना कुम्हार के घड़ा बनती नहीं, कोई बीज कोई चमन बिना माली के बनता नहीं। देवताओं को गुरु की आवश्यकता नहीं, देवताओं को कोई बना नहीं सकता है। जैसा यहां पुण्य किया वैसे वहां देव बने, जैसे बने वैसे जी लेते हैं, जैसा यहां पाप किया वैसे नारकी बने, वहां भी कोई बनाता नहीं है, जैसा यहां कर्म किया वैसे पशु बने, पशु को भी कोई बनाता नहीं है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जन्मता कर्म से है, जो जन्मता कर्म से है, लेकिन बनता है बनाने वालों के कारण से। सेंटेंस को वापस एक बार ध्यान से सुने, जन्मते हैं कर्म के कारण से, लेकिन जीवन जो बनता है, पर्सनालिटी जो बनती है, लाइफ जो बनती है, वो बनाने वाले के कारण से बनती है। वो बिगाड़ने वाले के कारण से बिगड़ जाती है, वो सुधारने वाले के कारण से सुधर जाती है। ये दूध के हाथ में नहीं है उसने घी बनना है कि फट जाना है। गाय केवल दूध दे सकती है, भैंस केवल दूध दे सकती है, लेकिन उसको दही बनाना, उसको छाछ बनाना, उसको घी बनाना, उसको मक्खन बनाना कि उसको फटने देना, ये कोई गाय भैंस तय नहीं करती है। ऐसा ही तुम्हारा और मेरा जीवन है,
मैं आज सबसे पहले मेरे पिता को नमन करता हूं। जिन्होंने जिनके मैंने दर्शन नहीं किए थे, मैं समझता नहीं था, मैं जानता नहीं था, उस मेरे बचपन में ही मेरे दिल में गुरुदेव की नहीं भगवान की प्रतिष्ठा कर दी। मैं आज यहां पर हूं तो उसका पहला श्रेय किसी को है तो मेरे पिता को है। मैं बहुत कृतज्ञ हूं उनके प्रति। उनके मुंह से मैंने कभी गुरुदेव शब्द नहीं सुना। एक गुरुदेव शब्द तुम्हारे संपर्क से मेरे पर आया, मेरे पिता के मुंह में नाम भी नहीं था, केवल भगवान शब्द।

और ये जो मैं प्रयास करता हूं इसलिए करता हूं कि जैसे पिता ने मेरे हृदय में उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित करी, मैं चाहता हूं कि ऐसी ही प्रतिमा उनकी आपके दिल में प्रतिष्ठित कर दो। दिल आपका मंदिर तो है ही, तभी आप यहां पर आए हो। यदि आपका दिल मंदिर न होता तो आप यहां नहीं आते। उस मंदिर में मुझे केवल उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी है आपके दिल में, और ये काम YouTube के सुनने वालों में नहीं हो सकता है। ये काम नजर से नजर मिला करके ही हो सकता है। स्क्रीन से नजर मिला करके कथा तुम सुन सकते हो, जानकारी तुम ले सकते हो, लेकिन वाइब्रेशन नहीं ले सकते हो। यहां जो तुम्हारे सभी के भक्ति के वाइब्रेशन है, इसको कोई कैमरा, कोई टेक्नोलॉजी इंटरनेट पर स्प्रेड नहीं कर सकता है। इसलिए आपके समझदारी को अभिनंदन देता हूं कि आपके पास भी ऑप्शन था दुकान में बैठ करके, घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके, सोफा सेट पर बैठ करके यूट्यूब पर सुनने का ऑप्शन आपके पास भी था, लेकिन आपने डिवोशन का ऑप्शन चुना और चल करके आप यहां पहुंचे। यह आपका श्रद्धा का मंदिर और गुरु कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से, जैसे मेरे दिल में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है वैसी प्राण प्रतिष्ठा आपके दिल में हो जाए। इस मंगल भावना से कथा शुरू करने जा रहा हूं।

नौ तत्व में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आश्रव तत्व। आने के दरवाजे, आना, लेना और किसी ने दिया है तो उसको ग्रहण करना है, इसको आश्रव कहते हैं। आश्रव का मीनिंग है इनकमिंग। ये इनकमिंग कई तरीके से होती है। हम स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं और हमने दरवाजे खुले रखे तो बिना हमारे ग्रहण किए भी, जैसे हमने खिड़की खुली रखी तो हवा और उजाला लाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है। और यदि दरवाजे खिड़कियां खुली रख करके भी नहीं आया तो कोई उसको ला भी सकता है। चौथे सिचुएशन के लिए स्वयं को तैयार करें। वे बहुत बहुत बहुत अनूठे लोग होते हैं जिनके दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं। पूरा सुनना, बीच में मत बोलना। जिनके दरवाजे और खिड़कियां बंद होती हैं, जो खोलना भी नहीं चाहते, जिनको खोलते आता भी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति आकर के जबरदस्ती उनका दरवाजा बाहर से तोड़ देता है और वो नहीं चाहता है तो भी उसके जीवन में प्रभु का प्रवेश करा देता है। चंडकोशिक ने अपने दरवाजे, खिड़कियां प्रभु के लिए बंद करके रखे थे। लेकिन तीर्थंकर महावीर ने उसके दरवाजे तोड़ दिए, उसकी खिड़कियां तोड़ दी और उसके विरोध के बावजूद उसके दिल में स्वयं को प्रतिष्ठित करके दिया। ये लोग बहुत अनूठे होते हैं। कई लोगों के दरवाजे और खिड़कियां वे तोड़ना नहीं चाहते, वे खोलना नहीं चाहते, लेकिन सरकमटेंस ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि न चाहते हुए भी उनके दरवाजे खुल जाते हैं। रोहिणी चोर, जिसके पिता ने उसको अंतिम समय में एक आज्ञा दी थी, एक वचन लिया था उससे कि कभी तो भगवान महावीर को नहीं सुनेगा, उनके दर्शन कभी नहीं करेगा, उनके पास तो कभी नहीं जाएगा, कि रोहिणी चोर के पिता को पता था कि जिस दिन ये तीर्थंकर महावीर के संपर्क में आएगा ये चोर नहीं रहेगा। और रोहिणी चोर ने अपने पिता को कमिटमेंट वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम समय में आपको वचन देता हूं कि मैं कभी तीर्थंकर महावीर को सुनूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, उनके दर्शन करूंगा नहीं, उनकी वंदना करूंगा नहीं। और चोर था, गजब का चोर था, अद्भुत चोर था, अभय कुमार के बुद्धि को मात देने वाला चोर था। अभय कुमार को हम बुद्धि निदान कहते हैं, कोई पकड़ नहीं पा रहा था उसको, बहुत प्रयास किए,
एक बार ऐसा हुआ कि चोरी करते हुए वो घर वाले जग गए और वो भागता गया, भागता गया, भागता गया, उसके पीछे लोग भागते चले गए और भागते भागते उधर चला गया जिधर भगवान महावीर की धर्म सभा चल रही थी। और जैसे उसको पता चला कि इधर धर्म सभा है और मैंने पिता को वचन दिया हुआ है कि मैं दर्शन करूंगा नहीं, मैं प्रवचन सुनूंगा नहीं, उसने दौड़ते दौड़ते ही अपने कानों में उंगलियां डाली कि मुझे सुनना नहीं है, वरना तो करनी ही नहीं है, देखना ही नहीं मुझे, सुनना भी नहीं मुझे। और दौड़ता चला जा रहा, पीछे लोग लगे हुए हैं, किसको कहते सिचुएशन। और उसके पांव में जोर से कांटा चुभ गया। कभी कभी जिंदगी में एक्सीडेंट होना इस सौभाग्य का दरवाजा खोल जाता है, और जिनके जिंदगी में एक्सीडेंट से दरवाजे खुल जाते हैं वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। और ऐसा ही रोहिणी चोर ए बहु मॉनिटर बनता लेते, वैसे ही रोहिणी चोर का हो गया, पांव में कांटा चुभना कितनी बड़ी बाधा एक चोर के लिए, एक भागने वाले के लिए। अरे तिथुन उठून ए बहु तिथुन उठून पा कुटल कर, कैसे हो गया ये, कांटा चुभ गया, कितने उसके मन में विचार चले होंगे, अरे ये क्या हो गया, अब कांटा निकालने जाओ तो कान खुले हो जाते और कांटा नहीं निकालो तो दौड़ने में दिक्कत आती है, और पकड़ा जाऊंगा पकड़ा जाऊंगा।

0: मॉनिटर चालू नाही तर
1: चेक कर रहे
0: असे चालता चालता का बंद पडते बघ गाडी, त्याच्याही पावात काय काटा गेला का? तू थोडे त्यांना चप्पल टाकून पाठव ना. और चार वाक्य उसके कानों पर गए जो कोई उपदेश के नहीं थे, देवता के विषय में थे कि देवता के पांव जमीन को छूते नहीं है, देवता की छाया पड़ती नहीं है, देवता की पलके झपकती नहीं है और देवता के गले की माला मुरझाती नहीं है. ये चार वाक्य पूरे हुए और कांटा निकल गया और उसने वापस कान बंद कर लिए. और ये आप सभी का, मेरा सभी का अनुभव है, जिसको हम भूलना चाहते हैं वो याद रहता है, उसको याद करना नहीं पड़ता, वो याद रह जाता है. अब वो रोहिणी चल भूलने का प्रयास करे कि नहीं, सुना सुनना मेरे हाथ में नहीं था लेकिन मुझे याद नहीं करना है, और याद नहीं करने के प्रयास वो याद होता चला गया, पकड़ा गया. और पकड़ा गया तो वो तो उसके अभय कुमार के अगला था, नहीं बोले मैं वो चोर हुई नहीं, मैं तो उस गांव का सेठ हूं, तुम जाकर उस गांव में पूछो. और उस गांव में गए तो गांव वाले बोले वो तो हमारा बहुत उपकारी है, उसके जैसा तो सज्जन व्यक्ति हमने जिंदगी में देखा ही नहीं, अप्रूव भी नहीं और साक्षी भी नहीं. अभय कुमार ने कहा कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैंने तेरा इंसल्ट किया, मैं तेरा सत्कार करना चाहता हूं, मैं तेरा सम्मान करना चाहता हूं, आज के दिन तू मेरे घर पर मेजबानी ले. क्या ले? मेजबानी ले. बड़े बढ़िया बात. और मेजबानी का पूरा रंगा नाच बताया, रंगा रंग कार्यक्रम, मस्त शराब पिलाई. क्या पिलाई? हेलो बोलो ना, क्या पिलाई? जो भी शराब पिलाते हैं वो तुमको पकड़ने के लिए शराब पिलाते हैं, और जो भी शराब पीते हैं वे नशा नहीं करते, स्वयं का विनाश करते हैं. ये दो संस्कृतियां दुनिया में, जिसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है, एक ने वायलेंस फैलाया है और एक ने ये स्वैराचार फैलाया है. इस दुनिया के बर्बादी के कारण कोई है तो दो कल्चर है, ये दो व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने लोगों को हिंसा करना सिखाया, काटना सिखाया, नॉन वेज खाना सिखाया, और एक ने सीखा कि खाओ पियो मौज करो, मरने के बाद कुछ नहीं. ये दो कल्चर के मैं नाम नहीं लेता हूं, तुम सबको ये दो कल्चर के नाम पता है. और इन दो कल्चर के कारण से दुनिया बर्बाद के कगार पर है. और इसको यदि बचाना है तो केवल तीर्थंकर महावीर के दो सिद्धांत बचा सकते हैं, अहिंसा और संयम. आवश्यकता है इस समय विश्व को अहिंसा सिखाने वाले धर्म की, संयम सिखाने वाले धर्म की. और आप देख सकते हो कि आपके पास नेटफ्लिक्स के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से अहिंसा नहीं आती है, संयम नहीं आता है, वहां से वही परोसा जाता है और बड़े सुंदर तरीके से परोसा जाता है. ऐसा परोसा जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके जीवन में कब जहर घोल गया है. आवश्यकता है बंधुओं अहिंसा और संयम को पहुंचाने की. अभय कुमार ने बहुत नशा कराया रोहिणी चोर को, मस्त खाना खिलाया, वो गुंग

0: सुनने लगा। जैसे आप सुनते सुनते कभी झपके लेने लग जाते हैं, इसलिए मैं सुनने वालों से थोड़ा बच करके रहता हूं कि मुझे पता है सुनते सुनते कब सो जाएगा। इसलिए बीच में जो मैं सवाल पूछता हूं ना, वो इसलिए नहीं पूछता हूं कि मुझे कोई रुकना होता, इसलिए पूछता हूं कि तुम कहीं सोए कि नहीं सोए, वो देखने के लिए घुसते रहता हूं। ये जो चींटियां भरते रहता हूं ना, वो इसके लिए कि मुझे पता है कि आप सभी को सुनते सुनते सो जाने की आदत माने लगाई है। किसने लगाई है? हाँ, अपने को नींद आती नहीं थी, नींद आती नहीं थी, सोने की इच्छा नहीं होती, लेकिन इनको सुलाना था। सो जा, थारी राजा, थारा राजा, काजा माजा नाजा, सो जा। बराबर है ना? इतनी लोरिया सुना सुना करके बोर किया, अब नया तो कोई शब्द आता नहीं उसमें। सो जा रे महारा राजा, वो सुनते सुनते बोर हो गए और तब से आदत लग गई सुनते सुनते। जो आप कहते हो ना कि महाराज साहब मैं बोलने लगी कि घूरने लगे, और जिम्मेदारी इन बातें नहीं है, वो मानी सिखायो। जरा भी कोई बोले तो सो जाओ न हो, नहीं तो थाने कंटिन्यू लोरी सुनाने बोर कर दी ना, तो वो आदत लगी है। इसलिए चाहता हूं जो ऐसे तो बहुत खिलाया पिलाया, और जब वो बिल्कुल आधी नींद में चला गया, जिसको आज कहते हैं ना नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट समझते हो ना, कि जिस समय कंट्रोल स्वयं पर रहता नहीं और उसमें बिल्कुल मस्त तो पाए के उसको ऐसे एसी रूम में पहुंचाया जहां मस्त नृत्य चल रहे थे, नाटक चल रहे थे, गीत संगीत ताल एक से बढ़कर एक सुंदरिया नाच रही है। ऐसा लगा कि मानो पूरा देवलोक उतर करके आया और सारा ऐसा सीन बनाया, जैसे तुम नेटफ्लिक्स पर ओटीटी पर देखते हैं ना, कि बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल कहां पहुंच गए, हाँ स्वर्ग में पहुंच गए। और उसमें थोड़ा सा कुछ खा पी करके देखा तो फिर पक्का ही स्वर्ग का अनुभव है, वैसे उसका हो गया। और वो आई नाचते नाचते आई सुंदरी, और उसने कहा आपने बहुत पुण्य किया, पिछले जन्म में आपने क्या किया, कौन सा धर्म किया, क्या किया जो आप यहां देवलोक में आए हैं। इस देवलोक का एक प्रोटोकॉल है, इस देवलोक का एक नियम है कि आपका हमको अभिषेक करना है, सिंहासन पर बैठाना है, लेकिन सिंहासन पर बैठाने के पहले आपके पिछले जन्म का प्रीवियस लाइफ का सच्चा सच्चा सच्चा इतिहास जानना है। यदि आपने झूठा बोला तो आपको यहां से नीचे फेंका जाएगा, और आपने सच सच बताया तो आप यहां सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। अब वो देखे उनके तरफ, ये क्या मामला है, और उसको भगवान महावीर के वचन याद आ गए कि देवता के पांव जमीन पर टिकते नहीं। अरे ये तो जमीन माते चाल रहे हैं। ओके, देखा उनके तरफ इनके पलके भी झपक रही है, इनके शाड़ो भी गिर रही है और मालाएं भी मुरझा रही है, और एक पल में उसका सारा नशा उतर गया। वो समझ गया कि अभय कुमार का खेल है। किसके कारण से समझ गया? भगवान महावीर के वचन के कारण से। और उसने कहा मैंने पिछले जन्म में इतना पुण्य किया है, इतनी सामाई करी है, इतनी तपस्या करी है, इतनी साधु साधुओं की सेवा करी है। अभय कुमार सुन रहा था, बोला यार ये तो सिर को सवा सिर निकल गया, इसने तो सारा मेरा खेल। हेलो बोलो ना, मेरा मत बिगाड़ना, है ना। अपना खेल कौन सा चल रहा है? 3600 प्लस 28 का अरे आसन की बात थोड़ी है रामे, यह करण की बात है। रोहिणी चूर ने अभय कुमार का खेल बिगाड़ा, वो अच्छा किया, लेकिन तुम मेरा खेल बिगाड़ोगे तो अच्छा नहीं होगा, इतना ध्यान में रखना, है ना। कितनी अठैया बोलो ना, बाबू सेठ को विश्वास नहीं है। कल मुझे पूछता है कि मार साहब कितनी आठ में, कभी 3600+ खर्च हुई ना कि मारा साहब, कल पूछा मुझे उसको, पूछो। मैंने कहा भाऊ गफलत में मत रह जाइए, नगर है। क्या है ये नगर के आज तक के हर कार्यक्रम में सारी व्यवस्थाएं कोल्याप्सित हुई है। और आपको बता दूं, कल रात में हमारे अरुण स्पिरिट को हम लेकर के स्वाध्याय हॉल में बैठे, वो हॉल भी बाराना भर दिया, और मुझे लगता है कि आज के दिन तो स्वाध्याय भवन में बैठेंगे, कल स्वाध्याय भवन का हॉल छोड़ करके बाहर आना पड़ेगा। ये कहाँ हो सकता है, ये गुरुदेव की भूमि पर हो सकता है। और मैं तृतीय शिष्य महाशाह को कह रहा था, गुरुदेव की कृपा इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है, इतनी बरस रही है कि मैंने सपने में नहीं सोचा था कि ऐसी कृपा बरस। ये 15 साल से लेकर 25 साल के बीच के जवान, कल तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ऐसे आते हैं, ऐसे आते कि जैसे तुम भी नहीं आते हो, तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। 9:30 के क्लास को वो 9:15 बजाते हैं, अंधेरे 9:15 बज रहा है, व्याख्यान ने 9 बजे पुगो। ऐसा फ्लड और दूसरे फ्लड की तैयारी हो रही है। एक नया ग्रुप कल बन गया है, जैन जी मदर्स ग्रुप। क्या जैन जी मदर्स ग्रुप? वो ला रहे 13 साल से लेकर तो 17 साल के जनरेशन को, ये है 15 साल से लेकर 25 साल के। और वो बेने मुझे बोली, महाराज साहब वे 13 साल और उन्हें संभालो जल्दी से, वे 13 ना कभी 9 तो 11 हो जाए मालूम है। और मैंने कहा तुम करो, तुम बोले करते हैं। तो नया ग्रुप कल बना है, क्या कर ग्रुप का नाम क्या है, अरहम जैन जी मदर्स ग्रुप। और मंडे को कितने बजे कोई है, 4:30 से 5, 4:30 से 5 मंडे के दिन पहला उनका इंट्रोडक्शन क्लास हो रहा है। इस मंडे को दोपहर में 4:30 से 5 13 साल से लेकर 17 साल के बेटे और बेटियां दोनों के लिए। उनका खास आग्रह वही था कि बेटियों को भी बुलाओ, तो बेटे और बेटियां दोनों के लिए। और आज दोपहर में तो है ही बेटियों का 3 से 4, 4 से 5 माणिक नगर बहुमंडल का। तुम्हारो खेल के कर जो थे थाने के वाटे में भूल गई हो, मैं भूलूला को नहीं, थाने भूलू दूला को नहीं, पक्का याद रखना। 5 तारीख को कम से कम यहां 4,000 लोगों ने अठाई की धारणा करनी चाहिए। हाँ, बाहर की जो आएगी वो बोनस में, बाहर की जो आएगी वो बोनस में। मूल भांडवल के कहां का होना चाहिए, हाँ, गुरुदेव की भूमि है और गुरुदेव की भूमि पर कर्जा नहीं चलता। क्या यदि बाहर की आठा या नगर से ज्यादा हो गई तो नगर वालों पर कर्जा हो जाएगा। अब बाहर की आठाएं क्या होनी चाहिए, गिफ्ट में, बोनस में। सारी आठाएं कहां से होनी चाहिए, हाँ, 7,000 घर है और 7,000 घर में से सजोड़े आठाया हो जाए तो आंकड़ों कठाड़ों कठे पुग जाएगा। और जो जिन जिन जिन बहनों ने अठाई करने का ठाना है ना, उनको एक छोटा सा वाक्य दे के रखता हूं, जिनके साथ शादी करी ना उनके प्रेम की कसूटी ले लो, मैं भुक्की अंथे खाओ, ये कोई प्रेम है के? ऐसा प्रेम क्या काम का? प्रेम किसको कहते हैं? तू सुखी मैं सुखी, तू दुखी तू भूखी मैं भूखू। नहीं नहीं तू भूखे रह जा मैं खाऊ, इन्हें प्रेम कहे गए? खरे बोलो थे, इन्हें प्रेम कहे गए? नहीं। तो चेक कर ले जाओ, इसे नकली प्रेम करता हो ना, ना तो दीक्षा मोहरत जल्दी निकाल ले जाओ। तो अभय कुमार ने कहा कि तूने तो पता नहीं कहां से मेरे अगला वो आया, और उसने कहा रोहिणी मैं जानता हूं तू चोरी है, मैं जानता हूं तू चोरी है, लेकिन मैं तुझे प्रमाणित नहीं कर पा रहा हूं, तू मेरे अगला निकला है, मैं तेरे बुद्धि का अभिनंदन करता हूं, मैं तेरे स्किल का अभिनंदन करता हूं, तेरे पास जो बुद्धि है तो मेरे से भी आगरा निकल गया, मैं तुझे छोड़ता हूं, लेकिन मुझे पता है कि तू चोर है। और वो रोहिणी बाहर आया, और आने के बाद दिमाग घूम गया, मैंने केवल तीर्थंकर महावीर के चार वाक्य सुने, मैं सुनना नहीं चाहता था, नहीं सुनने के मेरे पक्का नियम था, फिर भी वो चले गए और मैं अभय कुमार के षड्यंत्र से बच गया। यदि मैं ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के वचन श्रद्धा से सुनूंगा तो मैं तो संसार के ही षड्यंत्र से बाहर निकल जाऊंगा। और वो अपने पल्ली में नहीं गया, वो सीधा महावीर के पास पहुंचा और उसने दीक्षा ले ली। दूसरे दिन राजा सैनिक परमात्मा के दर्शन के लिए गया और पूछा कि परमात्मा बताओ ना उस रोहिणी चोर को कैसे पकड़ो। क्या पूछा? रोहिणी चोर को कैसे पकड़ो? भगवान महावीर ने उससे पूछा, वो यदि रोहिणी चोर चोर नहीं रहा हो और साधु बन गया हो तो तू क्या करेगा? बोले वंदना करूंगा। तो बोले वो देखो वहां बैठा है, इसको कहते हैं जबरदस्ती आश्रय कराना। क्या करना बोलो? वो सुनना चाहता था नहीं, न चाहते हुए भी सुन लिया, न चाहते हुए भी सुन लिया तो भी आनंद गाथा से कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। ये आनंद गाथा है, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, ये आनंद गाथा है। जिसने प्रवीण ऋषि का जीवन बनाया वो आनंद गाथा है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आज जो तुम्हारे सज्जन नहीं आए, उनकी इच्छा हो नहीं हो, इच्छा हो नहीं हो, उन्होंने कैसे पचकान ले रखे हो कि प्रवीण ऋषि के दर्शन नहीं करने, प्रवीण ऋषि का प्रवचन नहीं सुनना, तो भी जबरदस्ती उनको सुनाओ, आनंद गाथा सुनाओ। क्या सुनाओ? वरना उनको प्रवीण ऋषि का दर्शन मत कर, मत कर, प्रवीण ऋषि ने वंदना नहीं करने मत कर, लेकिन गुरुदेव की गाथा सुनाने का पाप लगेगा। हेलो हेलो बोलो ना यार, थाने थोड़ी पूछ रही हूं, उन्हें पूछ रही हूं, थाने तो पुण्य लागे भरुद आठे बैठे हो ना। एक प्रयास, मैं नहीं चाहता हूं आप भरपूर आए, नो डाउट, लेकिन क्या करो? गुरुदेव कहते थे मारवाड़ी बेटे को कितनी ही कमाई हुई तो क्या बोलता है, कम आई, कम आई, कमाई रूप फोड़ो कहीं निकले कम आई। मैं भी मारवाड़ी में बैठो, कितनी आई? कम आई। कितनी आई? हाँ, मारो तो मंत्र पक्को है, मैंने तो कभी वो डकर आवेज को नहीं, मैं पचकान लिया रहा है, कि डकार देवनोत से नहीं, वो तो आई बिल करता करता डकार देवे, और नहीं डकार नहीं देता। कितने थे आया तो मैं क्यों ला, नहीं नहीं घना आया वह, मैं कदी से नहीं क्यों ला, मैं कही क्यों ला, कम आई अपने का तो एक ही टारगेट होना चाहिए आनंद गाथा का। जैसे गुरुदेव ने अपने जीवन में सारी सारे इतिहास को पलट करके रख दिया, गुरुदेव का यदि जीवन है तो इतिहास को बदलने का जीवन है। जो उनके पहले नहीं था वो उन्होंने अपने जीवन में किया। पूरा समाज का दो चित्र है, एक गुरुदेव के पहले का समाज और गुरुदेव के बाद का समाज, बिल्कुल अलग है। और ये सारा चेंज किसने किया है? माय गुरुजी इज गेम चेंजर, इजंट ए गेम प्लेयर। वो खिलाड़ी नहीं थे, वो खेल बदलने वाले थे। उन्होंने मेरे जिंदगी का भी खेल बदला, तुम्हारे जिंदगी का भी खेल बदला है, नगर का भी खेल बदला है, पूरे भारत का खेल किसी ने बदला है, समाज का। तो एक ही नाम है। और ऐसे गुरुदेव की भूमि पर, और ये पंडाल छोटा नहीं पड़े, तो फिर तुमने और मैंने गुरुदेव का आनंद गाथा का आनंद लिया ही क्या? हाँ दे दो तुम, हम देखते हैं। यस चैलेंज, नहीं नहीं हाँ मस्त हाथ लेकर के आया हूं मैं। तो कल ये आनंद गाथा शुरू हो चुकी है, इस आनंद गाथा का आश्रय करना है। क्या करना है, क्या करना है? गुरुदेव के पास शुभ आश्रय की कला थी। किसकी कला थी? शुभ आश्रय की कला थी। माँ ने कहा उन्होंने आश्रय किया, गुरु ने कहा उन्होंने आश्रय किया, पंडित जी ने कहा उन्होंने आश्रय किया, और किसी ने बुरी बात कही नो आश्रय, उसको ग्रहण करना ही नहीं। हम वही बनते हैं जो हम ग्रहण करते हैं। जो होता है उससे जिंदगी बनती नहीं, जो हम लेते हैं उससे जिंदगी बनती है। तो अब अभिनंदन आपका, आप आए और कल आप अपनों को, हेलो वाक्य पूरा करो, कल हम बोलो ना अपनों को पक्का प्रॉमिस, प्रॉमिस टूथपेस्ट के अनब्रेकेबल प्रॉमिस, हेलो अनब्रेकेबल प्रॉमिस है ना। और ये तो हम देख ही रहे हैं कि बचपन को मंगल पाठ, अने बचपन को मंगल पाठ, इसमें मैं बचपना करता ही नहीं है ना। चतार ये मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम चलाई लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरण और न शरण कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय। आज दोपहर में बेटियों का शिविर माणिक नगर बहुमंडल के लिए, आज का दिन कसौटी का दिन, दोपहर में 4 से 5 बेटियों का शिविर और 4 से 6 आर्ट ऑफ ईटिंग। कल रात में मैं आया नहीं था, ये दिन का टाइम है, मैं आऊंगा आर्ट ऑफ ईटिंग। और 2 अगस्त कल 3 से 5 माय हस्बैंड माय फ्रेंड, जिनका जिनका हस्बैंड फ्रेंड है उनके लिए कार्यक्रम है, जिनका हस्बैंड रहने में है उनके लिए कार्यक्रम नहीं है। और मैं तो कहूंगा यानी भी होगा तो भी ले आना, कल उसको फ्रेंड बना के रख देंगे। तो गर्भ संस्कार का इंट्रो सेशन है। और 3 अगस्त परसों सोमवार अरहम जैन जी मदस ग्रुप द्वारा 13 साल से लेकर 10-17 साल के जनरेशन के लिए 4:30 से 5 का क्लास होगा। और तीर्थेश श्री महाराज साहब की भावना है कि रविवार रविवार को बच्चों का शिविर लिया जाए। वो मुझे बार बार कहता है और मैं कहता हूँ कि पहले तो टीचर की टीम तैयार कर और बाद में शिविर का अनाउंस करता हूँ। तो जो जो बच्चों के शिविर में अपनी सेवा देना चाहते हैं वे तीर्थेश श्री महाराज साहब से संपर्क करें।
1: आज दोपहर दो बजे
0: आज के पचकान एकासन
1: कर्म
0: शुरू हो गया। आज से सुबह 8 से 9 कर्मा का शिविर शुरू हो चुका है। और ध्यान में रखिए, वो शिविर है, बखान नहीं है। 8:01 को वहां एंट्री नहीं है और किसी ने वहां जबरदस्ती करनी नहीं। जिसको उसमें भाग लेना है उसने 8 बजे के पहले आसन ग्रहण करना है। उगे सूर्य एक समय के उपरांत तीन आहार के भक्तान स्व असलम खैमन सैमन सहसा करे नम महत्ता करे नम स्व समय अवत्या करे नम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का आयम बिल उगे सूर्य आयम बिल अम्बचका मिले वाले वे नम सहसा करे नम महत्ता करे नम स्व समय अवत्या करे नम ओसरे ओसरे ओसरे। अठाई में दवाई में मिक्स की हुई पेस्ट से ब्रश कर सकते।

हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
0: ओके।
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ।